प्रकाशित मार्गी बड़े सेबारागा कनगारा बाक्ति डिरि कनगरी हलु मंपा ये क्षत्रिय पिनिली नेता राधेन नागवर्षित सापा मडाले पुन नागवर्षित तिना कंटिंगने पुन माचान माचान अंदर